0: गुड मॉर्निंग छत्रपति संभाजीनगर, आरजे अदनान आपके साथ आ चुका है आपकी मॉर्निंग गुड करने के लिए अपने शो में जिसका नाम है
1: ऑल इज वेल। आरजे अदनान का मॉर्निंग शो फ्रेशनेस लाइव रेडियो का फ्लो
2: ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।
0: सो आज है तारीख 22 जुलाई और आज का दिन मेरे लिए थोड़ा नहीं बहुत बहुत और बहुत ही खास है, क्योंकि आज मैं पैदा हुआ था। जी हाँ, मेरा इस दुनिया में डाउनलोड हो चुका था आज के दिन। हाँ हाँ, आज मेरा जन्मदिन है और मैंने सोचा क्यों ना आज की सुबह की शुरुआत आपके साथ की जाए, क्योंकि अगर आप लोग ना होते तो इस माइक के इस शो में और इस मुस्कान में अधूरापन होता ही है। तो आप और मैं आज अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करने वाले हैं। मतलब मेरा यार बचपन में बर्थडे का मतलब था फूल वाली टोपी, स्कूल में चॉकलेट बांटना और हर बार एक ही सवाल, पार्टी किधर है। लेकिन अब बर्थडे का मतलब बदल चुका है, अब ये दिन है उन रिश्तों को याद करने का जो हर साल और भी गहरे हो जाते हैं। आज आप सुन रहे हो मुझे और यकीन मानिए आप सब जिंदगी का सबसे हसीन हिस्सा हो यार मेरे। तो चलिए आज का दिन बनाते हैं थोड़ा पर्सनल, थोड़ा इमोशनल और बहुत सारा म्यूजिकल। आपके लिए भी एक सवाल है, किस इंसान का एक बर्थडे जो आप कभी भूल नहीं पाए और क्यों, जरा व्हाट्सएप करके बताइए 9359320080 इस व्हाट्सएप नंबर पर। एंड मेरा बर्थडे आज मैं सेलिब्रेट कर रहा हूँ, सो अगर आप विश करना चाहते हो तो कीजिए ना, बहुत अच्छा लगेगा मुझे अगर आपने मुझे विश किया तो। 9359320080 इस व्हाट्सएप नंबर पर। बाकी तो यार फुल ऑन एंटरटेनमेंट के साथ इंफोटेनमेंट के लिए आरजे अदनान के साथ सुनते रहिए।
1: All is well, Arjay Adnan ka morning show, freshness live radio ka flow
2: on MGM 90.8 FM।

பரிசோ கா கார்வா வித் ஆர்ஜி அதனான் ஒனேம் சியல் 90.8 FM. दोस्तों, क्या कभी आपके अंदर से एक आवाज आई है जो आपने सुना है कि यार तुमसे नहीं हो पाएगा? इसे कहते हैं सेल्फ डाउट, यानी खुद पर शक करना। आज की कहानी इसी पर है। एक बार एक चित्रकार अपनी सबसे बेहतरीन पेंटिंग शहर के बीचों बीच लगा दी और नीचे लिखा, जिस किसी को भी इसमें कोई कमी दिखे वहां एक निशान लगा दे। शाम को जब वो वापस आया तो देखा कि पूरी पेंटिंग निशानों से भरी थी। वो टूट गया। उसे लगा कि वो एक बुरा कलाकार है। अगले दिन उसके गुरु ने कहा, कल फिर वही पेंटिंग लगाओ, लेकिन इस बार लिखो जहां कमी दिखे उसे ठीक कर दे। शाम को पेंटिंग वैसे की वैसे ही थी, किसी ने एक भी निशान नहीं लगाया। जानते हैं क्यों? क्योंकि कमी निकालना आसान है, पर उसे सुधारने की हिम्मत और काबिलियत हर किसी में नहीं होती। दोस्तों, हम भी तो यही करते हैं। हम दूसरों की बातों और अपने डर की वजह से अपने काबिलियत पर निशान लगाने लगते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारे अंदर सुधारने की ताकत है। याद रखिए, डाउट फेलियर से ज्यादा सपनों को मार देता है। दुनिया आप पर तब तक यकीन नहीं करेगी जब तक आप खुद पर यकीन नहीं करोगे। तो अगली बार जब वो छोटा सा डर कहे कि तुम नहीं कर सकते, तो उसे जवाब दीजिए, रुको और देखो मैं कैसे करके दिखाऊंगा। अपनी कमियों को निशान मत बनाइए, उन्हें सुधारने का रास्ता बनाइए, क्योंकि आप वो यूनिक पेंटिंग है जिसे खुदा ने खुद बनाया है। तो आज के लिए बस इतना ही। खुद से प्यार करें, खुद पर भरोसा रखें। मैं मिलूंगा आपके साथ कुछ देर के बाद बहुत सारी बातें करने। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद आरजे अदनान। किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 FM।

सच गर दर सरी वर सर।

प्यार हो गया। हम थे वो थी और हमार रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, हे याने याने याने प्यार हो।

गया मैं कैसे उसकी बातों में, कहता हूँ तुमको लेने दो आ हा हा, कोई वो कैसे मेरी बातों में, कहता हूँ तुमको लेने दो आ हा हा, क्या क्या कह डाला आंखों आंखों में, कहता हूँ तुमको लेने दो आ हा हा। हमसे वो थी और समार रंगीन, समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गए।

हम थे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो।

0: खेचा आहा हा घबराहट में फिर अपना अपना हाथ उसने खेचा मैंने खेचा आहा हा हमसे वो थी और हमार रंगीन समझ गए ना जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना याने याने याने प्यार हो गया
1: मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन हम उस पर गौर करते हैं क्या आप सुन रहे हो MGM 90.8 FM और इसी पर बात करने के लिए मेंटल हेल्थ को वेल रखने के लिए अपने साथ है डॉक्टर मानसी करसगांवकर मैम HOD MGM साइकोलॉजी डिपार्टमेंट सो मैम मेरा आज का सवाल आपसे ये है कि क्या मेडिटेशन एक्सरसाइज या ब्रीथिंग टेक्निक कॉर्पोरेट स्ट्रेस को कम करने में हेल्प कर सकती है क्या
2: देखिए बिल्कुल हेल्प कर सकती है क्योंकि एक्सरसाइज जो है इट्स एज गुड एज मैजिक पिल क्योंकि एक्सरसाइज करने से हमारे जो एंडोर्फिन्स हैं वो रिलीज होते हैं और ये एंडोर्फिन्स जो है ये नेचुरल स्ट्रेस बस्टर्स होते हैं तो एक्सरसाइज तो बिल्कुल मतलब मैजिक पिल की तरह काम करेगा डीप ब्रीदिंग जो है वो हमारे नर्वस सिस्टम को तुरंत काम डाउन करता है तो अगर हम मान लीजिए 7 डीप ब्रेथ्स ले ले है ना एंड इवन आई रेकमेंड टू एवरीवन हियर कि आफ्टर से एवरी 2 आवर्स अगर हम ये 7 डीप ब्रीदिंग साइकिल्स कर ले सो इससे हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन का सप्लाई भी सही होता है और फिर हमारा मूड भी सही हो जाता है प्लस हमारी नर्वस सिस्टम भी काम डाउन होती है सो द सेकेंड मैजिकल टेक्निक इज डीप ब्रीदिंग फॉर श्योर एंड तीसरा है कि जैसे 5 मिनट हमको हर 1.5 घंटे के बाद जो ब्रेक लेना है एक ग्लास पानी पीना है बैठ के और फिर थोड़ा सा वॉक कर लेना है 2-3 मिनट इससे हमारा मूड बदल सकता है मूड इम्प्रूव हो सकता है थोड़ा खिड़की में जाइए खिड़की से बाहर देखिए तब फोन हाथ में मत लीजिए तो ये 3 चीजें तो डेफिनेटली पॉजिटिवली बिल्कुल हेल्पफुल है
1: तो मेडिटेशन और एक्सरसाइज या फिर ऐसी गहरी सांस लेना और छोड़ना ये सब चीजें आपने फॉलो की तो आपका जो स्ट्रेस है जो कॉर्पोरेट लाइफ की वजह से आता है वो कम हो सकता है तो ये बात याद रखिए मेंटल हेल्थ को वेल रखिए और सुनते रहिए

गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप? क्या है आज की फरमाइश है आपकी, वो पूरी करूंगा मैं। बंदा आपकी खिदमत में हाजिर है ना, बस वही। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM एंड आज के गाने की फरमाइश आई है रेनू का काड़े की तरफ से इस गाने के लिए।

जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, ये सिर्फ गाना नहीं है, ये हकीकत है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि लाइफ में चुनौतियां हैं, यानी कि चैलेंजेस कभी खत्म नहीं होंगे। हर दिन हर मोड पर एक नया इम्तिहान होगा, लेकिन असली योद्धा वही है जो मुश्किलों से डरे नहीं बल्कि उनसे हाथ मिला है। लता मंगेशकर जी और नितिन मुकेश ने गाना गाया था और फिल्म थी मेरी जंग 1985 में आई थी। तो चलिए फिर, आप जिंदगी हर कदम एक नई जंग है ये गाना एंजॉय करते हैं। आपकी भी फरमाइश हो तो हमें व्हाट्सएप कीजिए 9359320080 इस व्हाट्सएप नंबर पर। आपकी पूरी फरमाइशें होती है कंप्लीट।

एक बात आपने नोटिस की होगी, कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ से गुजरते वक्त नहीं ऑटोमेटिकली नजरें पलट जाती है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ कचरा, गंदगी और बदबू होती है, होती नहीं ऐसी जगह। हेलो, मैं सिर्फ आरजी अदनान एंड यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM। लेकिन सोचिए, अगर वही जगह एक छोटे से गार्डन में बदल जाए तो बात निराली है ना। और दोस्तों, ये सिर्फ सोच नहीं है, हमारे अपने छत्रपति संभाजी नगर में सच होने जा रही है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने शहर के 30 बड़े गार्बेज स्पॉट्स को साफ करके वहाँ छोटे छोटे गार्डन डेवलप करने की शुरुआत की है। जहाँ पहले कचरे के ढेर हुआ करते थे, आज वहाँ हरियाली उग रही है। क्या बात है यार, ये सिर्फ सफाई नहीं है, ये सोच बदलने की भी शुरुआत है। हम अक्सर कहते हैं कि यार हमारा शहर तो क्लीन नहीं है, कब होगा पता नहीं, लेकिन जब एडमिनिस्ट्रेशन और सिटीजन दोनों मिलकर एक स्टेप लेते हैं तभी असली चेंज नजर आता है। अब जिम्मेदारी सिर्फ महानगर पालिका की नहीं, हम सबकी भी होती है। अगर हम फिर से वही जगहों पर कचरा फेंक देंगे तो गार्डन दोबारा गार्बेज पॉइंट बन जाएगा, लेकिन अगर हम उस हरियाली की हिफाजत करेंगे तो ये छोटे गार्डन कल हमारे बच्चों की मुस्कुराहट बन सकते हैं। तो आज एक छोटा सा प्रॉमिस करते, कचरा डस्टबिन में ही जाएगा और अपना छत्रपति संभाजी नगर हमेशा क्लीन और ग्रीन रहेगा। सो थैंक यू महानगर पालिका। और भी बातें अपनी जारी रहेगी कुछ ही देर में, तब तक स्टे ट्यून्ड।

0: बरसात मौसम शुरू है लेकिन बरसात चाहिए उस तरीके से हो नहीं रही, हो रही है थोड़ी 19 थोड़ी 20 वाली। हेलो माइसेल्फ आरजी अदनान एंड यू आर लिसनिंग एमजीएम 90.8 एफएम। और बात कुछ ऐसी है कि अब बारिश कितनी होगी भाई, मौसम का भी अपडेट जरूरी है ना। तो देखो पिछले कुछ टाइम से अपने शहर में जो बरसात हो रही है तो टोटल मिलाकर रिपोर्ट के मुताबिक, मैं दिल से नहीं कह रहा हूँ, 646 मिलीमीटर बरसात अपने पूरे जिले में हुई है छत्रपति संभाजीनगर में। और कहा जा रहा है कि आगे भी चलकर बारिश तो होगी लेकिन किस तरीके से होगी ये तो वक्त ही बताएगा। बाय द वे पावसाळा इतना तर असे काही बेडूक बाहेर निघतात जे की फिरायला वगैरे जातात, त्यातील बेडूक मी बनेके। आणि सध्या सोशल मीडियावर एक खूप व्हायरल स्पॉट आपल्या शहरातील व्हायरल होतोय जहां पर एक ही ट्री लगाया हुआ है और उस जगह पर पूरा शहर अपना जाता है। मैंने सोचा यार मैं भी जाऊं, मौसम है और जरा घूम के आते और अच्छे सा फोटो क्लिक करते, लेकिन वहां पर जाने के बाद पता चला कि अपना पूरा आधा शहर वहां पर ही आया हुआ है। मैं अकेला ही नहीं और भी बहुत सारे लोग थे, एक ढंग की फोटो क्लिक नहीं हुई यार। ऐसा आपके साथ भी हुआ है ना? और मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, कौन सी वो जगह है आपकी नजरों के सामने तो आई होगी, ऐसा तालाब है, पेड़ है वहां पर और बहुत अच्छा व्यू आता है। जैसे सोशल मीडिया पर ये जगह वायरल हुई पूरा शहर वहां पर नजर आ गया। सो अगर आप भी वहां पर जाने का प्लान कर रहे हो ना तो भाई थोड़ा लेट जाइएगा क्योंकि आधा शहर अपना वहां पर फिलहाल होगा। और बाकी बारिश का आना भी लाजमी है ही आने वाले वक्त में, ऐसा भी कहा जा रहा है, तो उसका भी ख्याल रखिए एंड सुनते रहिए।
1: जर तुमचं वय 18 ते 65 वर्ष असेल, तुमचं वजन किमान 45 किलो पेक्षा जास्त असेल, हिमोग्लोबिन व्यवस्थित असेल आणि तुम्ही निरोगी असाल तर तुम्ही सुद्धा रक्तदान करू शकता। लक्षात ठेवा, एका रक्तदानाने 3 जणांचे प्राण वाचू शकतात। तेव्हा चला रक्तदानाचा ध्यास घेऊया, गरजूंना नवा श्वास देऊया, कारण एका रक्तदानामुळे कुणाचं तरी आयुष्य वाचू शकतं। छोट्याशा या तुमच्या निर्णयामुळे एक कुटुंब पुन्हा हसू शकतं। महाराष्ट्राचे माजी उपमुख्यमंत्री लोकनेते अजितदादा पवार यांच्या जयंतीनिमित्त आयोजित करण्यात आलेला आहे भव्य महारक्तदान शिबिर, अर्थात सगळ्यांनी उत्साहाने सहभागी व्हायचंच आहे। दिनांक 22 जुलै सकाळी 9 ते 4 वाजेपर्यंत आणि स्थळ देवगिरी महाविद्यालय छत्रपती संभाजीनगर।

एक जमाना था मम्मी चिल्लाती थी, पढ़ाई कर वरना कुछ याद नहीं रहेगा। याद आया कुछ बचपन में ऐसा ही होता था ना। हेलो, माय सेल्फ आरजे अदनान एंड यू आर लिसनिंग एमजीएम 90.8 एफएम। और आज साइंस बोल रही है कि फोन थोड़ा साइड में रखो वरना वैसे भी कुछ याद नहीं रहेगा आपको। इस बार मम्मी ने नहीं, साइंस ने खुद कहा है। और आज है वर्ल्ड ब्रेन डे। इस मौके पर ना तो एक इंटरेस्टिंग बात आपको बता दूं कि रिसर्च के मुताबिक 10 में से लगभग एक इंसान की मेमोरी पर स्मार्टफोन का असर दिख रहा है। जी हाँ, अब सोचो पहले हमें 20 दोस्तों के नंबर याद रहते थे, याद थे ना, फिर आज अपने ही नंबर हमें खुद याद करना पड़ते हैं। वो जो 10 सेकंड लगते हैं हमें नंबर याद करने के लिए, अपना खुद का नंबर हमें याद है क्या? बहुत कम लोगों को याद होगा, या गिने चुने 2-4 दोस्तों के हमें नंबर याद होगी। एक टाइम था सभी के नंबर मुंह जबानी याद थे, और आज के वक्त में कुछ याद नहीं। बर्थडे याद नहीं होता है, फोन याद दिलाना पड़ता है, भाई फोन भूल गया लेकर जा, शॉपिंग लिस्ट अक्सर भूल जाते हैं, फोन में पासवर्ड क्या था ये भी लोग भूल जाते हैं, बैंक पासवर्ड भूल जाते हैं, एटीएम पासवर्ड भूल जाते हैं, और कभी कभार रास्ता भी भूल जाते हैं। एंड अक्सर होता है कई जगह पर हम खाना खाने जाते हैं, होटल में जाते हैं, और अपने बैग भी भूल जाते हैं। और ये क्यों हो रहा है, ये मैं अपने मन से नहीं कर रहा हूँ, एक रिसर्च में आया है कि अपने ब्रेन के ऊपर इतना प्रेशर गिरता है मोबाइल का, उस वजह से मेमोरी स्टोर करने का उसका सिस्टम धीरे धीरे कम हो रहा है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर दिमाग को एक्टिव रखना है तो सिर्फ कॉलिंग नहीं, रीडिंग करो, पजल सॉल्व करो, एक्सरसाइज करो, और कभी कभी फोन को भी थोड़ा रेस्ट दो। सिंपल चीजें करना है यार, फोन को बस साइड में रखना है, बाकी चीजें अपनी करनी है। याद रखिए स्मार्टफोन स्मार्ट है, लेकिन अगर हर छोटी बात उसी पर छोड़ दो तो हमारा ब्रेन थोड़ा लेजी जरूर हो जाएगा। इसलिए आज का चैलेंज एक सिंपल देता हूँ आपको, होप सो आप ये कम्प्लीट कर पाओगे। हर रोज कम से कम 30 मिनट नो मोबाइल टाइम, देखिए मेमोरी भी स्माइल करेंगी और आपका दिमाग भी शांत रहेगा। करोगे ना, ट्राई करके देखो यार, बहुत अच्छा लगेगा। अब बाकी तो बात ही होगी कुछ देर में, स्टे ट्यून।

0: इंजिनियर नव्हे तर फ्युचर रेडी प्रोफेशनल बनायचंय.
1: मग निवडा MGM विद्यापीठातील केमिकल इंजिनिअरिंग. सोबत शिका AI इन केमिकल इंजिनिअरिंग, AIML, डेटा सायन्स, बिझनेस अनालिटिक्स आणि फिनटेक स्पेशलायझेशन.
0: जागतिक दर्जाच्या लॅब्स, हँड्स ऑन प्रॅक्टिकल लर्निंग आणि NEP 2020 नुसार आधुनिक अभ्यासक्रम.
1: डेडिकेटेड ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट सपोर्ट, MNC कोलॅबोरेशन्स, इंडस्ट्री विजिट्स आणि टॉप केमिकल इंडस्ट्री मध्ये इंटर्नशिप.
0: लिमिटेड सीट्स. आजच MGM विद्यापीठ केमिकल इंजिनिअरिंग डिपार्टमेंटला भेट द्या किंवा कॉल करा 98 91 71 78 44.
2: डिनर का मूड हो या फैमिली आउटिंग, टेस्ट और MBS दोनों चाहिए तो आ जाइए मीनास किचन. यहाँ मिलेंगे डिलीशियस वेज नॉन वेज सूप, टेस्टी स्टार्टर्स, मलाई टिक्का कबाब, चिकन तंदूरी, मटन बुना और मीनास स्पेशल चिकन बिरयानी, रूफटॉप एम्बियंस, अमेजिंग टेस्ट और फुल फैमिली वाइब्स. मीनास किचन फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट एंड चीयर्स कॉर्नर, बॉम्बे हाइट्स 9th फ्लोर, बीड बाईपास रोड, छत्रपति संभाजीनगर.
3: क्या आप ऐसा करियर चुनना चाहते हैं जहाँ आपके भविष्य के साथ समाज का भी भविष्य बदले? तो आइए MGM के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी साइंस में, जहाँ डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस विद रिसर्च और अल्सो MSc स्पेशलाइजेशन इन फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन. एडमिशन ओपन फॉर 2026-27. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 7620322186 और 7017085546. MGM यूनिवर्सिटी, NCC, छत्रपति संभाजीनगर.
4: कॉस्मेटिक टेक्नॉलॉजीच्या UG आणि PG साठी ऍडमिशन मिळवा. BTech आणि MTech कॉस्मेटिक टेक्नॉलॉजी साठी MGM युनिव्हर्सिटी मध्ये बेसिक अँड अप्लाइड सायन्सेसच्या अंतर्गत आजच आपला प्रवेश निश्चित करा,
5: ज्यामध्ये सर्व प्रकारच्या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्सचे फॉर्म्युलेशन, रॉ मटेरियल्स, त्यांची केमिस्ट्री आणि अनालिसिस सोबतच न्यू ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजी ही शिकण्यास मिळेल. शिवाय विविध नामांकित कंपन्यांमध्ये प्लेसमेंटची हमी सुद्धा.
6: ऍडमिशन ओपन फॉर 2025-26. MGM युनिव्हर्सिटी, NCC, सिडको. व्हिजिट MGMU.ac.in. कॉल 9503.

0: करिअर साठी योग्य पर्याय शोधताय? इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी MGM युनिव्हर्सिटी मध्ये मिळवा फ्युचर रेडी प्रोग्रामची सुवर्ण संधी.
1: बीटेक इन कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड मशीन लर्निंग, बीटेक इन इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, बीटेक इन डेटा सायन्स,
0: PG, एमटेक इन AI अँड ML, एमटेक डेटा सायन्स आणि इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी मध्ये PhD करण्याची संधी, किंवा निवडा 12वी नंतर डिप्लोमा इन सायबर सिक्युरिटी अँड डिजिटल फॉरेन्सिक.
1: ऍडमिशन्स ओपन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 9404-94299.
2: डिनर का मूड हो या फैमिली आउटिंग, टेस्ट और MBS दोनों चाहिए तो आ जाइए मीनास किचन. यहाँ मिलेंगी डिलीशियस वेज नॉनवेज सूप, टेस्टी स्टार्टर्स, मलाई टिक्का कबाब, चिकन तंदूरी, मटन बुना और मीनास स्पेशल चिकन बिरयानी, रूफटॉप एम्बियंस, अमेजिंग टेस्ट और फुल फैमिली वाइब्स. मीनास किचन फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट एंड चीयर्स कॉर्नर, बॉम्बे हाइट्स 9th फ्लोर, बीड बाईपास रोड, छत्रपति संभाजीनगर.
3: मास्टर टुमारोज टेक टुडे नॉट समडे, मेक टुडेज वन राइट डिसीजन टुमारोज ब्राइट फ्यूचर. जॉइन Dr. G.Y. Patrikar College of Computer Science and IT at MGM University for BSc Honours, BCA, Digital Marketing, Animation, Data Science, MSc and PG Diploma, NEP 2020 ready, world-class labs or real industry project start. Admissions open for Dr. G.Y. Patrikar College for 2026 and 27. For more information, visit mgmu.ac.in or call on 937-117-4254.
4: MGM University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join MGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.

इमेजिन करो अगर आपका ब्रेन और स्मार्टफोन आपस में बात करते हैं तो क्या बोलते, कुछ इंटरेस्टिंग बातें तो होगी ही। हेलो, मायसेल्फ आरजे अदनान एंड यू आर लिसनिंग एमजीएम 90.8 एफएम। फोन बोलता बॉस सब कुछ मुझे ही याद रखना है, कॉन्टेक्ट नंबर भी, पासवर्ड भी, बर्थडे भी। ये फोन कहता, फिर ब्रेन कहता है भाई तूने मेरी जॉब ही ले ली है। और सच कहूं हम सबकी लाइफ ना तो कुछ ऐसी हो गई है, हर इंफॉर्मेशन हम फोन में सेव करते हैं। कहीं जाना हो फोन में डाल दो रिमाइंडर, वो अपने को रिमाइंड करता है। कुछ नोट करना हो फोन में नोट करो, हर इंफॉर्मेशन फोन में सेव है। इसलिए ब्रेन को याद रखने की प्रैक्टिस ही नहीं रही अब तो। एक बात आपने सिंपल नोटिस की होगी, पढ़ाई करते वक्त जब हम बचपन में स्मार्टफोन कम यूज करते थे तो कितने सारी चीजें हमें फटाफट याद रहती थी ना। आज तक हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड की जो पोएम से वो याद है सब कुछ, लेकिन उसके बाद स्मार्टफोन आ गया, फिर धीरे धीरे हम बड़े हो गए और ब्रेन को हमने आलसी बना दिया और हमें कितना भी रट्टा मारो हमें की पढ़ाई का लेसन भी याद नहीं होता है। ये सिंपल आपने ऑब्जर्व करना, ये आपके साथ भी हो रहा होगा। इसी वजह से एक्सपर्ट कहते हैं कि ज्यादा मोबाइल यूज करना ये दिमाग पर प्रेशर डालता है और इस वजह से मेमोरी और फोकस पर प्रॉब्लम होता है। लेकिन टेंशन की बात नहीं है, सॉल्यूशन भी सिंपल है ना, बस मोबाइल को साइड में रखना है, बुक न्यूज़पेपर पढ़नी है और अपने दोस्तों के साथ घूमना है, कई और फोकस करना है, बस मोबाइल से थोड़ा दूर रहना है। क्योंकि ब्रेन भी एक मसल की तरह होता है, जितना यूज करोगे उतना ही स्ट्रांग बनेगा। तो आज वर्ल्ड ब्रेन डे पर प्रॉमिस करते हैं ना कि अपने फोन को थोड़ा दूर रखेंगे और अपने ब्रेन को स्मार्ट बनाएंगे, क्योंकि स्मार्टफोन तो बन रहे लेकिन अपने ब्रेन स्मार्ट नहीं बन रहे। इस पर भी कोशिश कीजिए एंड सुनते रहिए।

ने क्रांति चौक में एक बैरिकेड लगाया हुआ था, याद है कुछ येलो कलर का। आप सुन रहे हो आरजी अदनान के साथ एमजीएम 90.8 एफएम। अब अच्छा हुआ वो बैरिकेड निकाल दिया गया ताकि ट्रैफिक जाम हो रहा था। बट वो बैरिकेड क्यों लगाया हुआ था, क्योंकि क्रांति चौक के पास में एक बड़ा गड्ढा हो चुका था और उस गड्ढे में किसी की गाड़ी ना जाए, इस वजह से वो बैरिकेड लगाया था, बरोबर है ना। लेकिन मुझे लगा कि यार बैरिकेड लगाए अब वो गड्ढा भर देगी और वो रास्ता एकदम साफ हो जाएगा, बट हुआ ऐसा, बैरिकेड तो हट गया है लेकिन वो गड्ढा जैसे कि वैसा है। हाँ, अंदर ना तो मुरुम डाला था और क्या बोलते हो तो बारीक खड़ी होती ना तो वो भी अंदर डाल दी थी और लगा था कि चलो गड्ढा ठीक हो गया, ऐसा महानगर पालिका का कहना था। बट बारिश के पानी से वो गड्ढा जैसे का वैसा फिर से तैयार हो चुका है और बैरिकेड तो हट गया है। तो यार आप काम कर रहे हो ना तो सलीके से और अच्छे तरीके से काम कीजिए ना, बस दिखावे के काम मत कीजिए। हाँ हाँ, हमने तो गड्ढा यहाँ का बुझा दिया, दो चार फोटो क्लिक कर दिए, सोशल मीडिया पे डाल दिए, एक न्यूज बन गई, काम हो गया। ऐसा नहीं होता है ना, करना है तो अच्छे से कीजिए, सलीके से कीजिए और ईमानदारी से कीजिए, क्योंकि क्रांति चौक में इतने सारे गड्ढे हो चुके हैं कि खुदा ना खास्ता किसी की गाड़ी स्लिप हो जाए तो मार बहुत लग सकता है और वो खड़ी जो है ना पूरे रास्ते पर फैल चुकी है, इस वजह से स्लिप होने के चांसेस बढ़ते हैं। बस क्रांति चौक वाला ही नहीं बल्कि मोंडा नाका ब्रिज के नीचे हम जब जाते हैं ना तो वहां पर भी

0: हर एक गाने की एक कहानी होती है, एक किस्सा होता है, एक मीनिंग होता है, तो इसे कहते हैं सॉन्ग डिकोडिंग। द सॉन्ग डिकोडिंग विद मी यानी कि आरजी अदनान ऑन MGM 90.8 FM।
1: लगान फिल्म का ये गाना तानसेन के मेक बल्हार से गाया गया है। इस मेघ मल्हार को तानसेन ने 16 सेंचुरी में गाया था। तानसेन का पूरा नाम था राम तान पांडे। लगान के इस गाने को अलका जी, उदित नारायण, शंकर महादेवन जी, शान और सुखविंदर सिंह ने गाया था। और शंकर महादेवन जी ने उनके एक इंटरव्यू में कहा था कि जब वो केरला में ये गाना गा रहे थे कॉन्सर्ट में, तो अचानक से उन्होंने आंखें बंद की और मेघ मल्हार का सुर लगाया और देखते देखते अगले 5 मिनट के अंदर हल्की हल्की सी बरसात होने लगी। यही तो खास बात इस मेघ मल्हार की।

0: इंजिनियर नव्हे तर फ्युचर रेडी प्रोफेशनल बनायचंय.
1: मग निवडा MGM विद्यापीठातील केमिकल इंजिनिअरिंग. सोबत शिका AI इन केमिकल इंजिनिअरिंग, AIML, डेटा सायन्स, बिझनेस अनालिटिक्स आणि फिनटेक स्पेशलायझेशन.
0: जागतिक दर्जाच्या लॅब्स, हँड्स ऑन प्रॅक्टिकल लर्निंग आणि NEP 2020 नुसार आधुनिक अभ्यासक्रम.
1: डेडिकेटेड ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट सपोर्ट, MNC कोलॅबोरेशन्स, इंडस्ट्री व्हिजिट्स आणि टॉप केमिकल इंडस्ट्री मध्ये इंटर्नशिप.
0: लिमिटेड सीट्स. आजच MGM विद्यापीठ केमिकल इंजिनिअरिंग डिपार्टमेंटला भेट द्या किंवा कॉल करा 98 91 71 78 44.
2: डिनर का मूड हो या फैमिली आउटिंग, टेस्ट और MBS दोनों चाहिए तो आ जाइए मीनास किचन. यहाँ मिलेंगी डिलीशियस वेज नॉनवेज सूप, टेस्टी स्टार्टर्स, मलाई टिक्का कबाब, चिकन तंदूरी, मटन बोना और मीनास स्पेशल चिकन बिरयानी, रूफटॉप एम्बियंस, अमेजिंग टेस्ट और फुल फैमिली वाइब्स. मीनास किचन फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट एंड चीयर्स कॉर्नर, बॉम्बे हाइट्स 9th फ्लोर, बीड बाईपास रोड, छत्रपति संभाजी नगर.
3: क्या आप ऐसा करियर चुनना चाहते हैं जहाँ आपके भविष्य के साथ

बाजीगर हो बाजीगर, अपनी गाड़ी जरा धीरे कर, समझा। हेलो माय सेल्फ आरजे अदनान एंड यू आर लिसनिंग एमजीएम 90.8 एफएम। और बाहर बरसात मौसम शुरू है और मौसम का मजा उठाने का मूड तो है, लेकिन ऑफिस भी जाना पड़ता है, ऐसा प्रॉब्लम होता है। भाई देखो यार, अगर आप काम करते होगे ना तो आप ऑफिस कीप नहीं करते। मतलब देखो आज हुआ क्या, जब मैं सवेरे ऑफिस आ रहा था ना, तो मेरा मन कर रहा था यार थोड़ा लेट चला जाऊँ, अब बारिश शुरू है यार, आज ऑफिस ना ही जाए तो बेहतर। बचपन में कैसा, बरसात आने के बाद मम्मी कहती थी कि आज मत जाओ स्कूल, बारिश चालू है, कल चले जाना, छुट्टी ले लेना। मन में वही एक थॉट आया मॉर्निंग में कि यार ऐसा अगर आज भी हो तो ऑफिस नहीं जाने का मूड कर रहा, नहीं गए और बारिश चालू है तो आज स्किप कर दिए। बट फिर वो सवाल आता है यार, जा नहीं गए तो पैसे कटेंगे, प्रॉब्लम क्रिएट होगा, और कुछ भी हो जाए जाना तो पड़ेगा ऑफिस में। तो ऐसा एक चीज़ मैंने नोटिस किया, और मैं अकेला ही नहीं हूँ। मॉर्निंग के टाइम पर आप देखोगे ना, कंपनी जाने वाली कुछ बसेस होती है, लोग अपने ऑफिस जाते हैं अर्ली मॉर्निंग 7:30-8 बजे, ऐसे बहुत से लोग हैं। बरसात हो कितनी भी, लेकिन मन में ख्याल आता ही है सबके कि यार आज स्किप कर देते ऑफिस, लेकिन नहीं कर पाते। कहना जिम्मेदारी जिसे कहते हैं ना, वही ये होती है, एंड दैट्स कॉल्ड अडल्टहुड, इसी को तो कहते हैं। आप करें तो करें क्या, यही इस दुनिया का दस्तूर है, और बस झेल लेते हैं। बाकी मौसम का मज़ा उठाइएगा और कभी कभार ऑफिस की भी कर दीजिएगा, कुछ नहीं होता है, इतना काम करके क्या ही करोगे। एट द एंड मरते वक्त मन में ख्याल आएगा यार ज़िंदगी में क्या किया, बस 9 to 5 किया, उसके बाद कुछ किया ही नहीं। तो कभी कभार 9 to 5 से 9 to 2 कीजिए, 9 to 12 कीजिए, और स्किप कीजिए ऑफिस, और अपनी ज़िंदगी जीते रहिए और जिंदगी गुलजार बनाइए, मौसम का मजा उठाइए, और अगला गाना एंजॉय कीजिएगा। वो दार जी अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।

0: आपको पता है, आप ना तो मेरे साथ 24/7 भी कनेक्ट रह सकते हो। आरजे अदनान आपके साथ है।
1: MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।
0: देखो यार, शो में ना तो मेरी और आपकी मुलाकात तो होती है, को मुझसे कनेक्ट रहना है यार, कुछ बात शेयर करनी है, कुछ बताना हो, जो कुछ भी बातें करनी हो ना, तो अपना सोशल मीडिया तो है ना यार। सोशल मीडिया पर यानी कि इंस्टाग्राम पर मेरा अकाउंट है आरजे अदनान, इस नाम से मेरा पेज है। अब देखो, एंटरटेनमेंट के लिए ना तो पहले रेडियो यूज हुआ करता था, अब तो रेडियो तो है, उसी के साथ साथ आपको आपके हाथ में भी एंटरटेनमेंट चाहिए ना, तो सोशल मीडिया के जरिए हो ही जाता। और मेरे ना तो जो कुछ रील्स में बनाता हूँ ना, एंटरटेनमेंट वाले होते, तो आपका वहां पर भी ना तो मैं मनोरंजन करूंगा ही, चाहे फिर वो मिनी व्लॉग हो, शायरी हो, कुछ फनी वीडियो हो, इन सब तरीकों से ना तो मैं आपका मनोरंजन करने के लिए सोशल मीडिया पर अवेलेबल हूँ। तो एक काम कीजिएगा, अपना मोबाइल हाथ में लीजिए, ले लिया क्या, लॉग ओपन कीजिए, इंस्टाग्राम ओपन करें, वहां पर सर्च करें RJADNAN अदनान, अदनान मत करो, बहुत से लोग ना तो मेरा नाम ही गलत लिखते, अदनान, अदनान नहीं यार, मैं ज्ञानी आदमी हूँ, RJ अदनान ADNAN, ये मेरा इंस्टा आईडी है। वहां पर ओपन करने के बाद देखो यार, लेफ्ट साइड में ना तो आपको ग्रीन कलर का बटन दिखेगा, हाँ एग्जैक्टली वही, अब आपकी प्यारी सी उंगली से उसको क्लिक करो और मुझे फॉलो भी करो। और देखो, मैं और आप ना तो फिर 24/7 कनेक्ट रह पाएंगे। सो इंस्टा पर आने के बाद मुझे फॉलो जरूर कीजिएगा और वहां पर भी अपना मनोरंजन मैं जारी रखूंगा। सो फॉलो कीजिए और बाकी सुनते रहिए आरजे अदनान के साथ MGM 90.8 FM। All is well, आरजे अदनान का मॉर्निंग शो, फ्रेशनेस लाइव रेडियो का फ्लो ऑन MGM 90.8 FM।
2: जर तुमचं वय 18-65 वर्ष असेल, तुमचं वजन किमान 45 किलो पेक्षा जास्त असेल, हिमोग्लोबिन व्यवस्थित असेल आणि तुम्ही निरोगी असाल, तर तुम्ही सुद्धा रक्तदान करू शकता। लक्षात ठेवा, एका रक्तदानाने 3 जणांचे प्राण वाचू शकतात। तेव्हा चला रक्तदानाचा ध्यास घेऊया, गरजूंना नवा श्वास देऊया, कारण एका रक्तदानामुळे कोणाचं तरी आयुष्य वाचू शकतं। छोट्याशा या तुमच्या निर्णयामुळे एक कुटुंब पुन्हा हसू शकतं। महाराष्ट्राचे माजी उपमुख्यमंत्री लोकनेते अजितदादा पवार यांच्या जयंतीनिमित्त आयोजित करण्यात आलेला आहे भव्य महारक्तदान शिबिर, अर्थात सगळ्यांनी उत्साहाने सहभागी व्हायचंच आहे। दिनांक 22 जुलै, सकाळी 9 ते दुपारी 4 वाजेपर्यंत, आणि स्थळ देवगिरी महाविद्यालय, छत्रपती संभाजीनगर। आंखें खुली हो या हो।

ये मैं ना तो अपने आप को कहना चाहता हूँ कि तुम ही हो खुद के लिए, क्योंकि देखिए यार हम हमेशा किसी ना किसी से उम्मीद लगाते रहते कि तू है मेरे साथ, तू रहेगी, तू रहेगा। क्यों भाई, तुम खुद से प्यार करो और बाखुदा खुद को बनाओ, समझे। एग्जैक्टली अभी 10:53 का वक्त हो चुका है, आरजी अदनान आपके साथ है और ये सेल्फ लव वाला गाना मैंने खुद को डेडिकेट किया है। क्यों पता है, क्योंकि आज खुद से प्यार करने की बात ज़रा मैंने सोचा, बिकॉज शो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि आज 22 जुलाई है और आज मेरा जन्मदिन है, तो इसीलिए ज़रा खुद के लिए कुछ ना कुछ हम डेडिकेट कर ही लेते हैं। अक्सर हम दोस्तों को किसी ना किसी को गाने डेडिकेट करते हैं, तो आज ये गाना खुद के लिए, खुद से प्यार करो। बाकी तो यार बहुत सारे इंस्टाग्राम पर मुझे अभी मैसेज आए, तो सबको तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बस जन्मदिन तो है, उम्र बढ़ रही है, बाकी ज़िंदगी वैसे ही चल रही है, तो कीप मुस्कुराना। अभी के लिए मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, मिलते हैं कल सुबह ठीक 7 बजे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हाँ मुस्कान की चमकान बरकरार रखिएगा, ये अगले गाने के साथ अपनी जिंदगी में भी धिंगाना लाते रहिएगा। स्टे ट्यून्ड ऑन MGM 90.8 FM।

0: ये पार्टी आपने नहीं की है?
1: तो
0: लोगों को देसी दारू आप ही पिला रहे हो?

0: आपल्या इंजिनियर नव्हे तर फ्युचर रेडी प्रोफेशनल बनायचंय.
1: मग निवडा MGM विद्यापीठातील केमिकल इंजिनियरिंग. सोबत शिका AI इन केमिकल इंजिनियरिंग, AIML, डेटा सायन्स, बिझनेस अनालिटिक्स आणि फिनटेक स्पेशलायझेशन.
0: जागतिक दर्जाच्या लॅब्स, हँड ऑन प्रॅक्टिकल लर्निंग आणि NEP 2020 नुसार आधुनिक अभ्यासक्रम.
1: डेडिकेटेड ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट सपोर्ट, MNC कोलॅबोरेशन, इंडस्ट्री विजिट आणि टॉप केमिकल इंडस्ट्री मध्ये इंटर्नशिप.
0: लिमिटेड सीट्स. आजच MGM विद्यापीठ केमिकल इंजिनियरिंग डिपार्टमेंटला भेट द्या किंवा कॉल करा 98 71 78 44.
2: क्या ऐसा करियर चुनना चाहते हैं जहां आपके भविष्य के साथ समाज का भी भविष्य बदले? तो आइए MGM के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी साइंस में, जहां डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस विद रिसर्च और अल्सो MSc स्पेशलाइजेशन इन फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन. एडमिशन ओपन फॉर 2026-27. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 7620322186 और 7017085546. MGM University Institute Bhojitrabadi Sambhajinagar.
3: Cosmetic Technology cha UG ani PG sathi admission milva. BTech ani MTech Cosmetic Technology sathi MGM University madhe Basic and Applied Sciences cha antargat aajach apla pravesh nishchit kara.
4: Ja madhe sarva prakarcha cosmetic products che formulation, raw materials, tanchi chemistry ani analysis sobatach new advanced technology hi shikhnyas milel. Shivay vividha namankit kampanyanmadhe placement chi hami suddha.
5: Admissions open for 2025-26. MGM University and 6 Sidko. Visit mgmu.ac.in. Call 9503082913.

0: इंजिनियर नव्हे तर फ्युचर रेडी प्रोफेशनल बनायचंय.
1: मग निवडा MGM विद्यापीठातील केमिकल इंजिनियरिंग. सोबत शिका AI इन केमिकल इंजिनियरिंग, AIML, डेटा सायन्स, बिझनेस अनालिटिक्स आणि फिनटेक स्पेशलायझेशन.
0: जागतिक दर्जाच्या लॅब्स, हँड्स ऑन प्रॅक्टिकल लर्निंग आणि NEP 2020 नुसार आधुनिक अभ्यासक्रम.
1: डेडिकेटेड ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट सपोर्ट, MNC कोलॅबोरेशन्स, इंडस्ट्री व्हिजिट आणि टॉप केमिकल इंडस्ट्री मध्ये इंटर्नशिप.
0: लिमिटेड सीट्स. आजच MGM विद्यापीठ केमिकल इंजिनियरिंग डिपार्टमेंटला भेट द्या किंवा कॉल करा 98 71 78 44.
2: क्या वैसा करियर चुनना चाहते हैं जहां आपके भविष्य के साथ समाज का भी भविष्य बदले? तो आइए MGM University के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी साइंस में, जहां डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस विद रिसर्च और अल्सो MSc स्पेशलाइजेशन इन फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन. एडमिशन ओपन फॉर 2026-27. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 7620322186 और 7017085546. MGM University Institute Chhatrapati Sambhajinagar.
3: Cosmetic Technology cha UG ani PG sathi admission milva. BTech ani MTech Cosmetic Technology sathi MGM University madhe Basic and Applied Sciences cha antargat aajach apla pravesh nishchit kara.
4: Ja madhe sarva prakarcha cosmetic products che formulation, raw materials, tanchi chemistry ani analysis sobatat new advanced technology hi shikhnyas milel. Shivay vividha namankit kampanyanmadhe placement chi hami suddha.
5: Admissions open for 2025-26. MGM University and 6 Sidko. Visit mgmu.ac.in. Call 9503082913.

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे,

अँड कंट्रोल इंजिनिअरिंग, जिथे शिकलं म्हणजे थेट इंडस्ट्री आणि जॉब रेडी होणं. सोच बदलो, इंस्ट्रुमेंटेशन के साथ रहो, अच्छा जॉब तो मिलना ही है. विजिट mgmu.ac.in और कॉल 9230877784.

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा MGM 94 FM रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए MGM 94 FM, साथ है तो बात।

कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94.8 एफएम रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94.8 एफएम, साथ है तो बात।

कोई बात है, एक लड़की भीगी भागी से, होती रातों में जागी से, मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे।

था मैं कैसे उसकी बातों में, कहता हूँ तुमको लेने दो आ हा हा, कोई वो कैसे मेरी बातों में, कहता हूँ तुमको लेने दो आ हा हा, क्या क्या कह डाला आंखों आंखों में, कहता हूँ तुमको लेने दो आ हा हा। हमसे वो थी और समा रंगीन, समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गए।

हम थे वो थी और हमार रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो

में फिर अपना अपना हाथ, उसने खींचा मैंने खींचा, हम थे मोती और समा रंगीन, समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ, जहां हर शाम होती है थोड़ी सी म्यूजिक, थोड़ी सी मस्ती और ढेर सारी अच्छी बातों के साथ। दिन भर की भागदौड़ के बाद अब वक्त है खुद को थोड़ा रिलैक्स करने का। चाहे आप घर पहुंच रहे हो, दोस्तों के साथ हो, फिर सफर में हो, अगर 2 घंटे हम रहेंगे आपके साथ। आज के शो में होंगे आपके पसंदीदा गाने, कुछ दिलचस्प बातें और ऐसे गाने जो आपकी शाम को और भी खूबसूरत बना देंगे। अगर कोई गाना आप किसी अपने के लिए डेडिकेट करना चाहते हैं या कोई खास मैसेज भेजना चाहते हैं तो अभी हमें मैसेज करिए ऑन माय इंस्टा हैंडल। मेरी इंस्टा आईडी है rjmanisha_, हो सकता है आपका मैसेज और आपका पसंदीदा गाना आज पूरे शहर के साथ ऑन एयर हो। तो तैयार हो जाइए एक शानदार म्यूजिक सफर के लिए, मुस्कुराइए, रिलैक्स कीजिए और इस खूबसूरत शाम का मजा लीजिए। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। अब बिना किसी इंतजार के बढ़ते हैं आज के पहले शानदार गाने की ओर, सिर्फ यही आपके फेवरेट रेडियो स्टेशन पर, ओनली ऑन MG Madipoint FM। साथ है तो बात है।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। कहते हैं शहर कभी सोता नहीं, ऊंची ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार ट्रैफिक, हर किसी के पास कोई ना कोई मंजिल। यही है हमारा कॉन्क्रीट जंगल। इस कॉन्क्रीट जंगल में हम रोज दौड़ते हैं ऑफिस, कॉलेज, बिजनेस और जिम्मेदारियों के बीच, लेकिन इस भाग दौड़ में कई बार हम छोटी छोटी खुशियां भूल जाते हैं। सुबह की ताजी हवा, किसी अपने के साथ 2 मिनट की बातचीत या फिर अपनी पसंद का एक गाना, ये छोटी छोटी बातें ही दिन को बेहतर बना देती है। जिंदगी सिर्फ काम करने का नाम नहीं है, बल्कि हर दिन कुछ पल अपने लिए निकालना भी उतना ही ज़रूरी है। इसलिए अगर आज का दिन थोड़ा मुश्किल रहा हो तो उसे यही छोड़ दीजिए, इस वक्त बस रिलैक्स कीजिए और म्यूज़िक को अपना साथी बनाइए। हम कोशिश करेंगे कि इस कॉन्क्रीट जंगल की भागदौड़ के बीच आपकी शाम में थोड़ा सुकून, थोड़ी मुस्कान और ढेर सारा अच्छा म्यूज़िक लेकर आए। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा, आप सुन रहे हैं दिल से। अब वक्त है अगले शानदार गाने का, आवाज जरा सी और बढ़ाइए और इस खूबसूरत शाम का आनंद लीजिए। ओनली ऑन MG 90.8 FM, साथ है तो बात है।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। शाम धीरे धीरे रात की ओर बढ़ रही है। शहर की सड़कों पर अब रोशनी जगमगा रही है। हर तरफ चमकती हुई सिटी लाइट्स, हल्की सी ठंडी हवा और एक अलग सा नाइट वाइब। सच कहे तो रात का अपना ही एक खूबसूरत जादू होता है। कोई ऑफिस से घर लौट रहा होता है, कोई दोस्तों के साथ चाय या कॉफ़ी एंजॉय कर रहा होता है, तो कोई अपनी बालकनी में बैठकर बस इस खूबसूरत शाम को महसूस कर रहा होता है। और ऐसे हर पल का सबसे अच्छा साथी होता है अच्छा म्यूजिक। कई बार दिन कितना भी बिजी क्यों ना हो, रात हमें थोड़ा रुकने, मुस्कुराने और खुद से मिलने का मौका देती है। बस एक पसंदीदा गाना, एक सुकून भरा पल और सारी थकान जैसे धीरे धीरे दूर होने लगती है। तो जहाँ भी है, जिस मूड में भी है, इस पल को एंजॉय कीजिए। शहर की इन खूबसूरत रोशनियों के साथ अपनी मुस्कान भी चमकने दीजिए, क्योंकि जिंदगी की सबसे प्यारी यादें अक्सर ऐसी ही शांत और खूबसूरत शामों में बनती है। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा, आप सुन रहे हैं दिल से। अब वक्त है एक और शानदार गाने का। आवाज़ थोड़ी सी बढ़ाइए और इस खूबसूरत सिटी लाइट्स, नाइट वाइब्स वाली शाम को म्यूजिक के साथ और भी खास बनाइए। ओनली ऑन MG 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा अंडरस्कोर। कहते हैं जब दिल किसी के लिए धड़कने लगे तो हर मौसम अच्छा लगने लगता है, चेहरे पर बिना वजह मुस्कान आ जाती है, छोटी छोटी बातें भी खास लगने लगती है। शायद इसी एहसास को एक खूबसूरत अंदाज में बयां करता है ये गाना जिसके लिरिक्स कुछ यूं है, दिल दीवाना। प्यार की सबसे प्यारी बात यही है कि इसमें कोई नियम नहीं होते, कभी एक मुस्कान दिल जीत लेती है तो कभी किसी की आवाज़, और जब दिल सच में दीवाना हो जाए तो फिर हर गाना, हर लम्हा और हर शाम थोड़ी सी और खूबसूरत लगने लगती है। अगर इस वक्त आपके दिल में भी किसी खास शख्स का नाम चल रहा है या फिर इस गाने से जुड़ी कोई प्यारी सी याद है तो उस एहसास को बस जी लीजिए। कभी कभी कुछ बातें कहने की ज़रूरत नहीं होती, संगीत ही सब कुछ कह देता है। तो अपनी शाम को थोड़ा और रोमांटिक, थोड़ा और खूबसूरत बनाइए, तैयार हो जाइए इस शानदार गाने का आनंद लेने के लिए। ऑफ कोर्स मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। इन द शो दिल से आप सुनते रहिए ये सदाबहार गाने ओनली ऑन एमजीएम 94.8 एफएम। साथ है तो बात है।
1: कायद्याच्या क्षेत्रात उज्ज्वल करिअर घडवायचे मग एमजीएम युनिव्हर्सिटी आहे तुमच्यासाठी सज्ज।
2: 12वी नंतर 5 वर्षांचा इंटिग्रेटेड बीबीए एलएलबी आणि 10वी नंतर 3 वर्षांचा एलएलबी हा पदवी प्रोग्राम निवडा। पदव्युत्तर शिक्षणासाठी एलएलएम मध्ये क्रिमिनल तसेच कॉन्स्टिट्यूशन किंवा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मध्ये 2 वर्षांचा तर बिझनेस लॉ मध्ये 1 वर्षाचा विशेष कोर्स उपलब्ध आहे। या सोबतच टॅक्सेशन आणि लेबर लॉ मध्ये करिअर ओरिएंटेड डिप्लोमा प्रोग्राम करण्याची सुवर्ण संधी मिळवा।
1: अधिक माहितीसाठी भेट द्या स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज अँड रिसर्च एमजीएम युनिव्हर्सिटी किंवा व्हिजिट mgmu.ac.in।
3: पाळीव प्राण्यांच्या आरोग्याची आता खास काळजी एमजीएम पेट केअर पेट क्लिनिक। आरोग्य तपासणी, उपचार, शस्त्रक्रिया, लसीकरण आणि अनेक पशुवैद्यकीय सेवा एकाच ठिकाणी। एमजीएम क्रिकेट स्टेडियम जवळ N6। कॉन्टॅक्ट नंबर 9860679130। एमजीएम पेट केअर।
4: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
5: एमजीएम विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
4: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू। ऑल्सो डिरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर। अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
5: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा एमजीएम कॅम्पस। गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
4: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in।
6: एडमिशन ओपन एमजीएम यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। Programs BTech 4 years after HSC, Computer Science and Engineering, IoT, Cyber Security including Blockchain Technology, Computer Science and Engineering, Cyber Security, Electronics Engineering, VLSI Design and Technology, Electrical Engineering, Robotics and Automation. For admission visit mgmu.ac.in or contact 9371714253 or visit MGM Campus N6 Sidco, Chhatrapati Sambhajinagar.

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। अगर आप इस वक्त सड़क पर हैं और घर की तरफ जा रहे हैं तो सबसे पहले अपना और अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिए। मंजिल ज़रूरी है लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है सुरक्षित घर पहुँचना। ट्रैफिक में जल्दबाजी करने से कुछ मिनट तो बच सकते हैं लेकिन एक छोटी सी लापरवाही बड़ा नुकसान भी कर सकती है, इसलिए गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट ज़रूर लगाइए। अगर दो पहिया वाहन चला रहे हैं तो हेलमेट पहनिए और मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करने से बचिए। याद रखिए हॉर्न कम बजाइए, ध्यान ज़्यादा रखिए, ट्रैफिक सिग्नल का पालन कीजिए और दूसरी गाड़ियों का भी सम्मान कीजिए। सड़क पर आपकी एक जिम्मेदारी किसी की ज़िंदगी सुरक्षित बना सकती है। अगर आप थके हुए हैं तो थोड़ा रुक कर आराम कर लीजिए और अगर मौसम ख़राब है तो अपनी स्पीड अपने आप कम कर दीजिए। सुरक्षित ड्राइविंग सिर्फ आपका नहीं आपके परिवार की मुस्कान का भी सवाल है, तो जहाँ भी है आराम से चलिए, मुस्कुराते रहिए और म्यूजिक का मजा लेते रहिए। हम चाहते हैं कि आपकी शाम अच्छी बीते और आप सुरक्षित घर पहुंचे। एंड ऑफ कोर्स अब वक्त है और कुछ शानदार गानों का। सीट बेल्ट बांध लीजिए, मुस्कुराइए और म्यूजिक के साथ अपने शाम को और भी खूबसूरत बनाइए। ओनली ऑन एमजी 90.8 FM, साथ है तो बात है।

है आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। अगर आप इस वक्त हाईवे पर ड्राइव कर रहे हैं तो ये बात आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लंबी और सीधी सड़क पर लगातार गाड़ी चलाते चलाते कई बार ऐसा होता है कि हमारा दिमाग एक ही चीज़ पर टिक जाता है। इससे आम भाषा में हाईवे हिप्नोसिस कहा जाता है। इस दौरान आँखें खुली रहती है लेकिन ध्यान थोड़ा भटक सकता है। कई किलोमीटर का सफ़र तय हो जाता है और बाद में याद भी नहीं रहता कि रास्ता कैसे निकल गया। यही वजह है कि लंबे सफ़र में थोड़ी थोड़ी देर पर खुद को अलर्ट रखना बहुत ज़रूरी है। उबासी आ रही है, आँखें भारी लग रही है या ध्यान भटक रहा है तो इसे नज़रअंदाज मत कीजिए। किसी सुरक्षित जगह पर गाड़ी रोकिए, थोड़ा आराम कीजिए, पानी पीजिए या थोड़ा टहल लीजिए। अगर ज़रूरत हो तो 15-20 मिनट की छोटी सी नींद भी आपको फिर तरोताज़ा कर सकती है। याद रखिए, कोई भी काम या मंजिल आपकी सुरक्षा से बढ़कर नहीं है। आपके घर पर कोई आपका इंतज़ार कर रहा है, इसलिए सुरक्षित पहुंचना सबसे ज़रूरी है। तो ड्राइव सुरक्षित कीजिए, सतर्क रहिए और इस खूबसूरत सफ़र में म्यूज़िक को अपना साथी बनाइए। अब बढ़ते हैं अगले शानदार गाने की ओर। आवाज़ थोड़ा सा तेज़ कीजिए और ऑफकोर्स एन्जॉय कीजिए ये बेहतरीन सॉन्ग्स ओनली ऑन MGM 90.4 FM। साथ है तो बात है।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। शाम का वक्त सिर्फ दिन खत्म होने का नहीं बल्कि एक छोटी सी चेक इन का भी होता है। जरा सोचिए, आज सुबह आपने जो टू डू लिस्ट बनाई थी उसमें से कितने काम पूरे हुए हैं? अगर सारे काम पूरे हो गए हैं तो खुद को एक छोटी सी शाबाशी जरूर दीजिए, और अगर कुछ काम बाकी रह गए हैं तो बिल्कुल परेशान मत होइए। हर दिन परफेक्ट नहीं होता, और परफेक्ट हो ये ज़रूरी भी नहीं है। ज़रूरी ये है कि हम हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहे। कई बार हम पूरे दिन इतना काम करते हैं कि अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों पर ध्यान ही नहीं दे पाते। इसलिए आज अपनी टू डू लिस्ट के साथ एक और लिस्ट बनाइए उन कामों की जो आपने अच्छी तरह पूरे कर लिए हैं। यकीन मानिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और कल की शुरुआत भी पॉजिटिव होगी। और हाँ, अगर कल के लिए कोई ज़रूरी काम है तो उसे अभी नोट कर लीजिए, इससे दिमाग हल्का रहेगा और शाम भी सुकून से बीतेगी। तो इस खूबसूरत शाम में खुद को थोड़ा सा समय दीजिए, अपनी छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट कीजिए और म्यूजिक के साथ रिलैक्स कीजिए। अब वक्त है एक और शानदार गाने का, आवाज थोड़ा बढ़ाइए और अपनी शाम को म्यूजिक के साथ और भी खूबसूरत बनाइए। ओनली ऑन एमजी 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। उम्मीद है कि आज की ये शाम आपके लिए सुकून भरी रही होगी। हमारे साथ बिताए हुए ये पल, पसंदीदा गाने और छोटी छोटी बातें आपके चेहरे पर मुस्कान लेकर आई होगी। अगर ऐसा हुआ है तो हमारी मेहनत सफल हो गई है। याद रखिए, जिंदगी चाहे कितनी भी बिजी क्यों ना हो, अपने लिए थोड़ा वक्त निकालना बहुत ज़रूरी है। अपनों के साथ कुछ पल बिताना, मुस्कुराना और हर दिन को नई शुरुआत की तरह जीने की कोशिश कीजिए। अगर आज का कोई गाना या कोई बात आपको पसंद आई हो तो हमें ज़रूर बताइए। आपकी मैसेजेस और प्यारे हमें हर दिन आपके और करीब लाते हैं। अब मैं चलती हूँ, लेकिन कल फिर से इसी समय एक नई एनर्जी, नई बातें और आपके पसंदीदा गानों के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड ऑफ कोर्स सुनते रहिए MGM 90.8 FM। साथ है तो बात है।
1: कायद्याच्या क्षेत्रात उज्ज्वल करिअर घडवायचंय, मग MGM युनिव्हर्सिटी आहे तुमच्यासाठी सज्ज।
2: 12वी नंतर 5 वर्षांचा इंटिग्रेटेड BBA LLB आणि पदवीनंतर 3 वर्षांचा LLB हा पदवी प्रोग्राम निवडा। पदव्युत्तर शिक्षणासाठी LLM मध्ये क्रिमिनल तसेच कॉन्स्टिट्यूशन किंवा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मध्ये 2 वर्षांचा तर बिझनेस लॉ मध्ये 1 वर्षाचा विशेष कोर्स उपलब्ध आहे। त्यासोबतच टॅक्सेशन आणि लेबर लॉ मध्ये करिअर ओरिएंटेड डिप्लोमा प्रोग्राम करण्याची सुवर्ण संधी मिळवा।
1: अधिक माहिती साठी भेट द्या स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज अँड रिसर्च MGM युनिव्हर्सिटी किंवा विजिट mgmu.ac.in।
3: पाळीव प्राण्यांच्या आरोग्याची आता खास काळजी MGM पेट केअर पेट क्लिनिक। आरोग्य तपासणी, उपचार, शस्त्रक्रिया, लसीकरण आणि अनेक पशुवैद्यकीय सेवा एकाच ठिकाणी। MGM क्रिकेट स्टेडियम जवळ N6। कॉन्टॅक्ट नंबर 9860679130। MGM पेट केअर।
4: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
5: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
4: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू। ऑल्सो डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर। अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
5: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्याचा MGM कॅम्पस। गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
4: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in।
6: ऍडमिशन ओपन MGM University School of Engineering and Technology. Programs BTech 4 years after HSC, Computer Science and Engineering, IoT, Cyber Security including Blockchain Technology, Computer Science and Engineering, Cyber Security, Electronics Engineering, VLSI Design and Technology, Electrical Engineering, Robotics and Automation. For admission visit mgmu.ac.in or contact 9371714253 or visit MGM Campus N6 Circle, Chhatrapati Sambhajinagar.

0: अर्थ होता है, एक मीनिंग होता है, तो इसे कहते हैं सॉन्ग डिकोडिंग। The song decoding with me, यानी कि आरजे अदनान on MGM 90.8 FM।
1: लगान फिल्म का ये गाना तानसेन के मेघ बल्हार से गाया गया है। इस मेघ मल्हार को तानसेन ने 16th सेंचुरी में गाया था। तानसेन का पूरा नाम था राम तान पांडे। लगान के इस गाने को अलका जी, उदित नारायण, शंकर महादेवन जी, शान और सुखविंदर सिंह ने गाया था। और शंकर महादेवन जी ने उनके एक इंटरव्यू में कहा था कि जब वो केरला में ये गाना गा रहे थे कॉन्सर्ट में, तो अचानक से उन्होंने आंखें बंद की और मेघ मल्हार का सुर लगाया और देखते देखते अगले 5 मिनट के अंदर हल्की हल्की सी बरसात होने लगी। यही तो खास बात इस

0: चाहते हैं जहां आपके भविष्य के साथ समाज का भी भविष्य बदले, तो आइए MGM यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी साइंस में, जहां डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस विद रिसर्च और also MSc स्पेशलाइजेशन इन फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन. एडमिशन ओपन फॉर 2026-27. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 7620322186 और 7017085546. MGM यूनिवर्सिटी इंस्टिट्यूट छत्रपति संभाजीनगर.
1: कॉस्मेटिक टेक्नोलॉजी च्या UG आणि PG साठी ऍडमिशन मिळवा. BTech आणि MTech कॉस्मेटिक टेक्नोलॉजी साठी MGM यूनिवर्सिटी मध्ये बेसिक अँड अप्लाइड सायन्सेस च्या अंतर्गत आजच आपला प्रवेश निश्चित करा,
2: ज्यामध्ये सर्व प्रकारच्या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स चे फॉर्म्युलेशन, रॉ मटेरियल्स, त्यांची केमिस्ट्री आणि अनालिसिस सोबतच न्यू ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजी ही शिकण्यास मिळेल. शिवाय विविध नामांकित कंपन्यांमध्ये प्लेसमेंटची हमी सुद्धा.
3: ऍडमिशन्स ओपन फॉर 2025-26. MGM यूनिवर्सिटी एन 6 सिडको. व्हिजिट mgmu.ac.in. कॉल 9

एक जमाना था मम्मी चिल्लाती थी पढ़ाई कर वरना कुछ याद नहीं रहेगा। याद आया कुछ बचपन में ऐसा ही होता था ना। हेलो मायसेल्फ आरजे अदनान एंड यू आर लिसनिंग एमटीएम 90.8 एफएम। और आज साइंस बोल रही है कि फोन थोड़ा साइड में रखो वरना वैसे भी कुछ याद नहीं रहेगा आपको। इस बार मम्मी ने नहीं साइंस ने खुद कहा है। और आज है वर्ल्ड ब्रेन डे। इस मौके पर ना तो एक इंटरेस्टिंग बात आपको बता दूं कि रिसर्च के मुताबिक 10 में से लगभग एक इंसान की मेमोरी पर स्मार्टफोन का असर दिख रहा है। जी हाँ, अब सोचो पहले हमें 20 दोस्तों के नंबर याद रहते थे, याद थे ना, फिर आज अपने ही नंबर हमें खुद याद करना पड़ते हैं। वो जो 10 सेकंड लगते हैं हमें नंबर याद करने के लिए, अपना खुद का नंबर हमें याद है क्या? बहुत कम लोगों को याद होगा, या गिने चुने 2-4 दोस्तों के हमें नंबर याद होंगे। एक टाइम था सभी के नंबर मुंह जबानी याद थे, और आज के वक्त में कुछ याद नहीं। बर्थडे याद नहीं होता है, फोन याद दिलाना पड़ता है, भाई फोन भूल गया लेकर जा, शॉपिंग लिस्ट अक्सर भूल जाते हैं, फोन में पासवर्ड क्या था ये भी लोग भूल जाते हैं, बैंक पासवर्ड भूल जाते हैं, एटीएम पासवर्ड भूल जाते हैं, और कभी कभार रास्ता भी भूल जाते हैं। एंड अक्सर होता है कई जगह पर

हम खाना खाने जाते होटल में जाते और अपने बैग भी भूल जाते हैं। और ये क्यों हो रहा है ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, एक रिसर्च में आया है कि अपने ब्रेन के ऊपर इतना प्रेशर गिरता है मोबाइल का, उस वजह से मेमोरी स्टोर करने का उसका सिस्टम धीरे धीरे कम हो रहा है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर दिमाग को एक्टिव रखना है तो सिर्फ कोलिंग नहीं, रीडिंग करो, पजल सॉल्व करो, एक्सरसाइज करो और कभी कभी फोन को भी थोड़ा रेस्ट दो। सिंपल चीजें करना है यार, फोन को बस साइड में रखना है, बाकी चीजें अपनी करनी है। याद रखिए स्मार्टफोन स्मार्ट है, लेकिन अगर हर छोटी बात उसी पर छोड़ दो तो हमारा ब्रेन थोड़ा लेजी जरूर हो जाएगा। इसलिए आज का चैलेंज एक सिंपल देता हूँ आपको, होप सो आप ये कंप्लीट कर पाओगे। हर रोज कम से कम 30 मिनट नो मोबाइल टाइम, देखिए मेमोरी भी स्माइल करेंगी और आपका दिमाग भी शांत रहेगा। करोगे ना, ट्राई करके देखो यार, बहुत अच्छा लगेगा। अब बाकी तो बातें होगी कुछ देर में। स्टे

इमेजिन करो अगर आपका ब्रेन और स्मार्टफोन आपस में बात करते हैं तो क्या बोलते हैं? कुछ इंटरेस्टिंग बातें तो होगी ही। हेलो माय सेल्फ आरजे अदनान एंड यू आर लिसनिंग एमजीएम 90.8 एफएम। फोन बोलता बॉस सब कुछ मुझे ही याद रखना है, कॉन्टेक्ट नंबर भी, पासवर्ड भी, बर्थडे भी, ये फोन कहता। फिर ब्रेन कहता है भाई तूने मेरी जॉब ही ले ली है। और सच कहूँ हम सबकी लाइफ ना तो कुछ ऐसी हो गई है, हर इंफॉर्मेशन हम फोन में सेव करते हैं। कहीं जाना हो फोन में डाल दो रिमाइंडर, वो अपने को रिमाइंड करता है। कुछ नोट करना हो फोन में नोट करो, हर इंफॉर्मेशन फोन में सेव है। इसलिए ब्रेन को याद रखने की प्रैक्टिस ही नहीं रही अब तो। एक बात आपने सिंपल नोटिस की होगी, पढ़ाई करते वक्त जब हम बचपन में स्मार्टफोन कम यूज करते थे तो कितने सारी चीजें हमें फटाफट याद रहती थी ना, आज तक हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड की जो पोएम से वो याद है सब कुछ। लेकिन उसके बाद स्मार्टफोन आ गया, फिर धीरे धीरे हम बड़े हो गए और ब्रेन को हमने आलसी बना दिया और हमें कितना भी रट्टा मारो हमें की पढ़ाई का लेसन भी याद नहीं होता है। ये सिंपल आपने ऑब्जर्व करना, ये आपके साथ भी हो रहा होगा। इसी वजह से एक्सपर्ट कहते हैं कि ज्यादा मोबाइल यूज करना ये दिमाग पर प्रेशर डालता है और इस वजह से मेमोरी और फोकस पर प्रॉब्लम होता है। लेकिन टेंशन की बात नहीं है, सॉल्यूशन भी सिंपल है ना, बस मोबाइल को साइड में रखना है, बुक न्यूज़पेपर पढ़नी है और अपने दोस्तों के साथ घूमना है, कई और फोकस करना है, बस मोबाइल से थोड़ा दूर रहना है। क्योंकि ब्रेन भी एक मसल की तरह होता है, जितना यूज करोगे उतना ही स्ट्रांग बनेगा। तो आज वर्ल्ड ब्रेन डे पर प्रॉमिस करते हैं ना कि अपने फोन को थोड़ा दूर रखेंगे और अपने ब्रेन को स्मार्ट बनाएंगे, क्योंकि स्मार्टफोन तो बन रहे लेकिन अपने ब्रेन स्मार्ट नहीं बन रहे। इस पर कोशिश कीजिए एंड सुनते

एक बात आपने नोटिस की होगी, कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ से गुजरते वक्त नहीं ऑटोमेटिकली नजरें पलट जाती है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ कचरा, गंदगी और बदबू होती है, होती नहीं ऐसी जगह। हेलो, मैं सिर्फ आरजी अदनान एंड यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM। लेकिन सोचिए, अगर वही जगह एक छोटे से गार्डन में बदल जाए तो बात निराली है ना। और दोस्तों, ये सिर्फ सोच नहीं है, हमारे अपने छत्रपति संभाजी नगर में सच होने जा रही है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने शहर के 30 बड़े गार्बेज स्पॉट्स को साफ करके वहाँ छोटे छोटे गार्डन डेवलप करने की शुरुआत की है। जहाँ पहले कचरे के ढेर हुआ करते थे, आज वहाँ हरियाली उग रही है। क्या बात है यार, ये सिर्फ सफाई नहीं है, ये सोच बदलने की भी शुरुआत है। हम अक्सर कहते हैं कि यार हमारा शहर तो क्लीन नहीं है, कब होगा पता नहीं, लेकिन जब एडमिनिस्ट्रेशन और सिटीजन दोनों मिलकर एक स्टेप लेते हैं तभी असली चेंज नजर आता है। अब जिम्मेदारी सिर्फ महानगर पालिका की नहीं, हम सबकी भी होती है। अगर हम फिर से वही जगह पर कचरा फेंक देंगे तो गार्डन दोबारा गार्बेज पॉइंट बन जाएगा, लेकिन अगर हम उस हरियाली की हिफाजत करेंगे तो ये छोटे गार्डन कल हमारे बच्चों की मुस्कुराहट बन सकते हैं। तो आज एक छोटा सा प्रॉमिस करते, कचरा डस्टबिन में ही जाएगा और अपना छत्रपति संभाजीनगर हमेशा क्लीन और ग्रीन रहेगा। सो थैंक यू महानगर पालिका। और भी बातें अपनी जारी रहेगी कुछ ही देर में, तब तक स्टे ट्यून।

0: आपल्या इंजिनियर नव्हे तर फ्युचर रेडी प्रोफेशनल बनायचंय,
1: मग निवडा MGM विद्यापीठातील केमिकल इंजिनिअरिंग. सोबत शिका AI इन केमिकल इंजिनिअरिंग, AIML, डेटा सायन्स, बिझनेस अनालिटिक्स आणि फिनटेक स्पेशलायझेशन.
0: जागतिक दर्जाच्या लॅब्स, हँड्स ऑन प्रॅक्टिकल लर्निंग आणि NEP 2020 नुसार आधुनिक अभ्यासक्रम,
1: डेडिकेटेड ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट सपोर्ट, MNC कोलॅबोरेशन, इंडस्ट्री व्हिजिट्स आणि टॉप केमिकल इंडस्ट्री मध्ये इंटर्नशिप.
0: लिमिटेड सीट्स. आजच MGM विद्यापीठ केमिकल इंजिनिअरिंग डिपार्टमेंटला भेट द्या किंवा कॉल करा 9891-7844.
2: क्या आप ऐसा करियर चुनना चाहते हैं जहां आपके भविष्य के साथ समाज का भी भविष्य बदले? तो आइए MGM यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी साइंस में, जहां डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस विद रिसर्च और अल्सो MSc स्पेशलाइजेशन इन फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन. एडमिशन ओपन फॉर 2026-27. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 7620322186 और 7017085546. MGM University, NCT, Chhatrapati Sambhaji Nagar.
3: Cosmetic Technology cha UG ani PG sathi admission milva. BTech ani MTech Cosmetic Technology sathi MGM University madhe Basic and Applied Sciences cha antargat aajach apla pravesh nishchit kara.
4: Ja madhe sarva prakarcha cosmetic products che formulation, raw materials, tanchi chemistry ani analysis sobatach new advanced technology hi shiknyas milel. Shivay vividha namankit companies madhe placement chi hami suddha.
5: Admissions open for 2025-26. MGM University and 6 Sidko. Visit mgmu.ac.in. Call 9503082913.

कुछ दिन पहले तक अपने क्रांति चौक में एक बैरिकेड लगाया हुआ था, याद आया कुछ, येलो कलर का। आप सुन रहे हो आरजी अदनान के साथ एमजीएम 90.8 एफएम। अब अच्छा हुआ वो बैरिकेड निकाल दिया गया ताकि ट्रैफिक जाम हो रहा था। बट वो बैरिकेड क्यों लगाया हुआ था, क्योंकि क्रांति चौक के पास ना एक बड़ा गड्ढा हो चुका था और उस गड्ढे में किसी की गाड़ी ना जाए, इस वजह से वो बैरिकेड लगाया था, बरोबर है ना। लेकिन मुझे लगा कि यार बैरिकेड लगाए अब वो गड्ढा भर देगी और वो रास्ता एकदम साफ हो जाएगा। बट हुआ ऐसा, बैरिकेड तो हट गया है लेकिन वो गड्ढा जैसे कि वैसा है। हाँ, अंदर ना तो मुरुम डाला था और क्या बोलते हो, तो बारीक खड़ी होती ना तो वो भी अंदर डाल दी थी और लगा था कि चलो गड्ढा ठीक हो गया, ऐसा महानगर पालिका का कहना था। बट बारिश के पानी से वो गड्ढा जैसे का वैसा फिर से तैयार हो चुका है और बैरिकेड तो हट गया है। तो यार आप काम कर रहे हो ना तो सलीके से और अच्छे तरीके से काम कीजिए ना, बस दिखावे के काम मत कीजिए। हाँ हाँ, हमने तो गड्ढा यहाँ का बुझा दिया, दो चार फोटो क्लिक कर दिए, सोशल मीडिया पे डाल दिए, एक न्यूज बन गई, काम हो गया। ऐसा नहीं होता है ना, करना है तो अच्छे से कीजिए, सलीके से कीजिए और ईमानदारी से कीजिए, क्योंकि क्रांति चौक में इतने सारे गड्ढे हो चुके हैं कि खुदा ना खास्ता किसी की गाड़ी स्लिप हो जाए तो मार बहुत लग सकता है और वो खड़ी जो है ना पूरे रास्ते पर फैल चुकी है, इस वजह से स्लिप होने के चांसेस बढ़ते हैं। बस क्रांति चौक वाला ही नहीं बल्कि मोंडा नाका ब्रिज के नीचे हम जब जाते हैं ना तो वहां पर भी बहुत गड्ढे है छोटे बड़े और वहां पर भी गाड़िया स्लिप होती है। खड्ड्यात गेलं शहर अशी सध्या परिस्थिती झालेली आहे आणि यातून बाहेर आपण कधी पडू हे मला तर माहित आहे, चलता है चलने दो, बल्कि बस चलता ही आ रहा है तो चलने दीजिए। बी सेफ, आप अपनी गाड़ी आहिस्ता से चलाइए, इतनी दरख्वास्त है।

0: पैसों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। एक दिन ऑफिस से घर लौटते वक्त मैंने ऑटो रोका। ऑटो में बैठते ही भैया ने मुस्कुराकर पूछा, साहब जल्दी पहुंचना या आराम से? मैंने कहा, आराम से चलिए, वैसे भी जिंदगी बहुत तेज भाग रही है। मेरी बातें सुनकर वो हंस पड़े, फिर बोले, साहब ये बात तो रोज सैकड़ों लोगों को बोलनी चाहिए, सबको मंजिल जल्दी चाहिए, सफर का मजा कोई नहीं लेता। बातों बातों में पता चला कि उन्हें ऑटो चलाते हुए 15 साल हो चुके हैं। मैंने पूछा, इतने सालों में क्या सीखा? उन्होंने रियर व्यू मिरर से मेरी तरफ देखा और कहा, सीखा ये कि हर सीट पर बैठने वाला इंसान अपनी अपनी कहानी लेकर चलता है। मैंने उत्सुकता से पूछा, वो कैसे? उन्होंने कहा, सुबह कोई इंटरव्यू देने जाता है, दोपहर में कोई अस्पताल, शाम को कोई डेट पर और रात में कोई अपने टूटे हुए दिल के साथ घर लौटता है। फिर थोड़ा रुककर बोले, लेकिन एक बात सब में कॉमन होती है। मैंने फिर पूछा, वो कौन सी बात? उन्होंने कहा, सबको लगता है कि उसकी परेशानी सबसे बड़ी है। मैं मुस्कुरा दिया। सफर आगे बढ़ता रहा, तभी उन्होंने एक और बात कही, साहब ट्रैफिक में फंसकर लोग गुस्सा करते हैं, लेकिन जिंदगी में भी हम सब कहीं ना कहीं ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, कोई पैसों में, कोई रिश्तों में, तो कोई सपनों में। अब मंजिल आने वाली थी। उतरते समय मैंने पूछा, भैया इतनी अच्छी बातें कहाँ से सीख लेते हो? उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया, साहब किताबें कम पढ़ी है लेकिन लोग बहुत पढ़े हैं। मैं किराया देकर उतर गया, लेकिन उस दिन एक नाइटो वाले भैया ने मुझे मेरी जिंदगी तक नहीं पहुंचाया, बल्कि जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया भी दे दिया। कभी कभी सबसे गहरी बातें बड़े लोगों से नहीं, सफर में मिलने वाले साधारण लोगों से सुनने को मिलती है।
1: किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।
2: अजूनही डिसाइड झालं नाही?
3: झालं रे, मी एमजीएम युनिव्हर्सिटी म्हणजेच एमजीएम युनिव्हर्सिटी इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट अँड रिसर्च ला ऍडमिशन घेणार आहे।
2: तिथे कोणते कोणते कोर्सेस आहेत?
3: बीबीए, बीकॉम, एमबीए, फायनान्स, एचआर, हॉस्पिटल मॅनेजमेंट, पीजी डिप्लोमा, एमकॉम आणि एक वर्षाचा एक्झिक्युटिव्ह एमबीए सुद्धा। याशिवाय तज्ज्ञ प्राध्यापक, सुसज्ज लॅब, बेस्ट कॅम्पस आणि बरंच काही।
2: आपल्या मुलांच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत। प्रवेशासाठी आजच कॉल करा 7668 7 8 3 8 9 वर किंवा www.mgmu.ac.in वर भेट द्या। MGM University, तुमच्या यशाचा मार्ग।
4: Your dream is to become an engineer, an architect, or to make a name for yourself in the world of technology. So MGM University's JNEC is the best option for you. Courses accredited by AICTE and COA. BTech, MTech, Bachelor of Architecture, Master of Architecture, and MCA. Here you get excellent placement, innovation and research facilities, and a global network of more than 20,000 alumni. Merit and sports scholarship is also available. And the biggest thing is not to wait for the cap round. MGM University. For admission, call on 940-4474-266 or visit mgmu.ac.in.
5: इंजिनिअरिंग ची डिग्री आहे पण हातात जॉब नाही ना?
6: कारण थिअरी तर सगळे शिकवतात पण इंडस्ट्रीला हवे असतात ऑटोमेशन साथीचे प्रॅक्टिकल स्किल्स।
5: AI, मशीन लर्निंग, IoT हे तर ऑटोमेशनचे अविभाज्य घटक आहेतच, पण याचबरोबर सेन्सर टेक्नॉलॉजी, कंट्रोल सिस्टम आणि कंट्रोलर आवश्यक असतात ऑटोमेशन अप्लाय करायला, आणि इथेच आज अनिवार्य आहे इन्स्ट्रुमेंटेशन अँड कंट्रोल इंजिनिअरिंग।
6: कॉलेज आणि इंडस्ट्री यांच्यातील गॅप कमी करण्यासाठी आम्ही सुरू केलंय UDICE,
5: MGM युनिव्हर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ इन्स्ट्रुमेंटेशन and control engineering, जिथे शिकलं म्हणजे थेट इंडस्ट्री आणि जॉब रेडी होणं। सोच बदलो, इंस्ट्रुमेंटेशन के साथ रहो, अच्छा जॉब तो मिलना ही है। विजिट mgmu.ac.in और कॉल 9230877784।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलो, चाहे कली से प्यार।

करूं चाहे फूलों के साथ के।